0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के, मेजर मानिक एम जोली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीज़न सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज़ हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस तो, आपने उस पर या तो अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
0: जी
1: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: तो वहाँ से मेरी क्लास से हम 5 गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा इट हैज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने का हरियाणा में। तो बस हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिक एम जोली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं, साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया।
1: हाँ जी।
0: उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे गोरखा रेजिमेंट में 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने करीब दस साल आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रदान की, और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
1: हाँ जी।
0: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबा समय दिया है, सर्व किया है।

0: आपने, और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था,
0: अच्छा,
1: तो जब हमारी कमीशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने को
0: हम भी
1: मिलेगा।
0: जाएंगे। अच्छा
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज़ ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए,
0: ओके
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहाँ पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था कि आप
0: अच्छा
1: लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए, राइट। लेकिन
0: जी
1: लेकिन लेकिन जब तक हम कमीशन हुए एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
0: अच्छा
1: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
0: हाँ, मतलब एक फौजी
1: बिल्कुल,
0: है और
1: हाँ जी,
0: वो चाहता है कि मैं उस किसी तरह से मैं लड़ाई का
1: बिल्कुल,
0: हिस्सा बनूं।
1: इससे बड़ा टेस्ट क्या
0: जी
1: है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
0: बिल्कुल।
1: तो वो यूँ लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे, समझे।
0: अच्छा, और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे
1: हाँ जी,
0: मिलते थे,
1: हाँ जी,
0: बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, बहुतों बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे। वो हमारे से 1 या 2 कोर सीनियर्स थे, काफ़ियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे। जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
0: जी,
1: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, और मुझे याद है मैंने उनसे, जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे, तो
0: अच्छा
1: मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की, तो मैंने कहा
0: अच्छा
1: सर कैसेट तो वापस कर जाओ। कहते हैं अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे। मतलब
0: ओके
1: आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो
0: बिल्कुल
1: हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया।
0: जी,
1: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, ये सारे
0: विक्रम
1: हमारे
0: बत्रा।
1: सीनियर्स थे,
0: अच्छा
1: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है। इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
0: जी
1: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं, मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली बहुत
0: एथिकली और साथ ही
1: इज़ वेरी
0: साथ
1: वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं उनमें से
0: जी
1: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे, हम
0: हम
1: कहते हैं
0: आगे
1: हम
0: चलेंगे।
1: आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो।
0: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिले तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज़ और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: আপনাদের প্রিয় কেন্দ্র আকাশবাণী শিলিগুড়ি
3: এখন একযোগে মিডিয়াম ওয়েভ আর ডিআরএম ট্রান্সমিটারে,
2: সেই একই চেনা ঠিকানায়
3: 421.9 মিটার,
2: 711 কিলোহার্টজ।
3: শুধু কি বাড়িতেই?
2: নতুন মডেলের কিছু গাড়িতেও আপনারা পাবেন ডিআরএম সম্প্রচার,
3: ঝকঝকে ডিজিটাল,
2: কাহিনী কথা সুরতাল।
3: আকাশবাণী শিলিগুড়ি এখন আরো জোরদার,
2: কারণ ডিআরএম সম্প্রচার
3: শুনতে ভুলবেন না।
2: স্টে টিউনড। আপনাদের
4: मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया।

0: घोषको भूमिका बारे आरोपहरू उठेको छ। नेताजी सुभाष चन्द्र बोसबारे अभद्र अनि अपमानजनक टिप्पणी गरेको विरुद्ध पश्चिम बंगालको भाजपा सरकारले आफ्नै पार्टीका कुचबिहारका राज्यसभा सांसद अनन्त महाराजमाथि कार्यवाही थालेको छ। राज्य सरकारले अनन्त महाराजलाई प्रदान गरेको बंग विभूषण सम्मान फिर्ता लिने घोषणा पनि गरेको छ। डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीको 125 जयन्तीको अवसरमा पश्चिम बंगाल सरकारले स्कूलदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्मको पाठ्यक्रममा उहाँको जीवनी र योगदानलाई समावेश गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आज नवन्नामा आयोजित विशेष समितिको पहिलो बैठकपछि यो घोषणा गर्नुभएको हो। पश्चिम बंगाल अनि यससित संलग्न बंगलादेशको तट नजिक उत्तर पश्चिमी बंगालको खाड़ीमा उत्पन्न निम्न दबावका कारण पश्चिम बंगालमा भारी वर्षा भइरहेको छ। मौसम विभागले छत्तीसगढ गंगाको मैदानी पश्चिम बंगाल र ओडिसामा भारी वर्षाको रेड अलर्ट जारी गरेको छ। कोतवाली पुलिसले जिल्लामा लागू औषध विरोधी अभियानको क्रममा लगभग 90 ग्राम ब्राउन सुगर सहित एकजना लागू औषध तस्करलाई पक्राउ गरेको छ। पुलिस टीमले रानी नगर क्षेत्रमा छापा मारेर सो तस्करलाई पक्राउ गरेको हो। पक्रा परेको तस्कर जलपाइगुडीको सरदारपाडा क्षेत्रको बासिन्दा रहेको थाहा लागेको छ। यो समाचार युट्युबमा एआईआर कर्सियङ मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। संसदका दुवै सदनको कार्यवाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। गत महिनाको 20 तारिकबाट शुरू भएको मनसून सत्र आज सम्पन्न भयो। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा 16 अगस्तमा कोलकाता आउनुहुनेछ र आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत बंगालमा स्वास्थ्य सेवाहरू शुरू गर्नुहुनेछ। पहाड़ तराई अनि डुवर्सका जिल्ला महकुमा तथा खण्ड स्तरमा आज भव्य रूपमा हर घर तिरंगा यात्राहरू निकालियो। जीटीए क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूबारे आज कोलकातामा राज्यका शिक्षा मन्त्रीसित एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो र आर्जिकल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा भएको दुष्कर्म र हत्याको मामिलामा टीएमसीका पूर्व विधायक निर्मल घोषलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। यसका साथै प्रादेशिक समाचार पूरा भयो।
1: आकाशवाणी सिलगढी अनुष्ठान प्रचारित हुन्छ मिडियम वेभ 400.9 मिटर अर्थात् 711 किलोहर्ट्ज एवं न्युज अन एआईआर एपे। এখন জাতীয় তাঁত দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান শুনবেন।
2: নমস্কার, আকাশবাণী শিলিগুড়ির জন্য বালুরঘাট থেকে আমি তুহিন শুভ্রমণ্ডল। আজ কথা বলবো তাঁত নিয়ে। 7 আগস্ট ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে অর্থাৎ জাতীয় তাঁত দিবস। এই উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র গঙ্গারামপুরে অবস্থিত তাঁত শিল্পের হাল হকিকত নিয়ে আলোচনা করব। কথা বলবো স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে, কথা বলবো অবশ্যই তাঁত শিল্পীদের সঙ্গেই। একসময় গঙ্গারামপুরের এই হস্তচালিত তাঁত বিপুল সম্ভাবনাময় ছিল, তার গৌরবও ছিল সমধিক। কিন্তু ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারামপুরের হস্তচালিত তাঁত কিন্তু এখন অবক্ষয়ের শিকার। অনেক মানুষ আছেন যারা দক্ষিণ দিনাজপুরে বেড়াতে এলে এই গঙ্গারামপুর থেকে তাঁতের শাড়ি অর্থাৎ হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি না নিয়ে যেতেনই না, একটা সুভেনির হিসেবে বা স্মারক হিসেবে তারা রেখে দিতেন। আবার দক্ষিণ দিনাজপুরেরও অনেক বাসিন্দা রয়েছেন যাদের পছন্দের তালিকায় ছিল এই হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি। বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এই তাঁত শিল্প সেটা নিয়েই আমরা আজ এই প্রতিবেদনে ঘুরে ফিরে দেখব আর জেনে নেব তাঁত নিয়ে কিছু মানুষের মনের কথা। কোথাও কি আক্ষেপ আছে নাকি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

0: अनुसार अनुशीला शर्माबाट सुन्नुहोस्। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचारहरूबाट। संसदको वर्ष अधिवेशन सम्पन्न, दुवै सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित। राष्ट्रपतिद्वारा 100 भन्दा बढी कलाकारलाई संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान। विपक्षले संसदमा छलफल हुन नदिएको किरण रिजिजुको आरोप। झारखण्डमा विद्यार्थीको प्रदर्शनले गर्यो 20 दिनमा प्रवेश। सुखबीर सिंह बादलमाथि महाराष्ट्रमा चक्कु प्रहार। अब समाचार विस्तारमा। संसदका दुवै सदनको कार्यवाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। गत महिना 20 तारिकदेखि सुरु भएको वर्ष अधिवेशन आज सम्पन्न भयो। 25 दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा 19 बैठक भए। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णनले समापन वक्तव्यमा सदनको कार्यवाहीमा पटक पटक आएको अवरोध प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले संसदहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न पर्याप्त अवसर दिए पनि जनताको आवाज उठाउन ती अवसरको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताए। यद्यपि उनले राज्यसभाले 12 विधेयक पारित तथा फिर्ता गरेर आफ्नो मूल विधायी जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए। राधाकृष्णनका अनुसार राज्यसभाको कार्यवाही जम्मा 37 घण्टा 49 मिनट चल्यो र 39.5

0: बस बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: चुपके चुपके छाया छवि गान गेछेन किशोर कुमार एवं मोहम्मद रफी।
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। देखिए, बिजनेस अच्छा हुआ है, अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
5: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन

0: संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
1: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को। देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
3: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल

0: आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक

0: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्यवाही और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfil its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the